ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 13 मई बुधवार रात 11:30 बजे शांग्विला जैन और वाइल अखबारों से सुने समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के साथ वार्ता के लिए चीन रवाना हुए। उम्मीद है कि वे व्यापार और आर्थिक मुद्दों के साथ साथ ईरान संघर्ष और ताइवान पर भी चर्चा करेंगे। दोनों नेता बृहस्पतिवार सुबह मिलेंगे। अक्टूबर में दक्षिण कोरिया में एपेक सम्मेलन से इतर मिलने के बाद यह उनकी पहली प्रत्यक्ष मुलाकात होगी। इसके बाद वे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल टेम्पल ऑफ हेवन का दौरा करेंगे और शाम को राजकीय भोज में शामिल होंगे। शुक्रवार को चीन से रवाना होने से पहले ट्रंप दोपहर के भोजन के दौरान भी वार्ता करेंगे। वार्ता में ताइवान प्रमुख मुद्दों में से एक हो सकता है। माना जा रहा है कि चीन सरकार ट्रंप से ऐसे बयान सुनना चाहती है जिससे उसे ताइवान पर लगाम कसने में मदद मिल सके। वहीं अमेरिका ने कहा है कि उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन चीन के खिलाफ अमेरिका की प्रतिरोधक क्षमताओं को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, खासकर इसलिए क्योंकि ईरान संघर्ष में अमेरिका अपने हथियारों का भंडार तेजी से इस्तेमाल कर रहा है। वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS ने इस बात का अध्ययन किया कि ताइवान पर चीन के संभावित हमले का क्या परिणाम हो सकता है। CSIS के रक्षा एवं सुरक्षा विभाग के वरिष्ठ सलाहकार मार्क कैसियन ने कहा कि उनके विश्लेषण से पता चलता है कि अमेरिका अब भी चीन का मुकाबला करने में सक्षम है, लेकिन नुकसान बहुत बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को कई वर्षों तक जारी रहने वाली नाजुक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा से पहले ईरानी अधिकारियों ने चीन के साथ मजबूत संबंधों को रेखांकित किया है। उनका कहना है कि अमरीकी दबाव के बावजूद चीन का ईरान के प्रति रुख नहीं बदलेगा। चीन में ईरान के राजदूत अब्दुल रेजा रहमानी फाजली ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दोनों देशों के मजबूत संबंध हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे प्राचीन सभ्यता और मजबूत सांस्कृतिक रिश्ते साझा करते हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई ने संघर्ष विराम वार्ता में अमेरिकी मांगों की आलोचना करते हुए उन्हें अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि वार्ता में बराबरी का लेन देन होना जरूरी है। बागाई ने कहा कि अगर आपको लगता है कि वार्ता का मतलब 100% एक तरफा संतुष्टि है तो यह वार्ता नहीं बल्कि दूसरे पर अपनी इच्छा थोपना है और ऐसा किसी भी हालत में नहीं होगा, कम से कम ईरान के मामले में तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरानी सेना अमेरिका की संभावित जमीनी कार्रवाई सहित हर स्थिति के लिए तैयार है। ट्रंप ने मंगलवार को वॉशिंगटन में पत्रकारों से कहा था कि वे ईरान के साथ केवल एक अच्छा समझौता ही करेंगे और संघर्ष विराम की समीक्षा की जा रही है। ईरान के एक सरकारी मीडिया केंद्र का कहना है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य के परिचालन क्षेत्र को पुनर्परिभाषित कर इसकी सीमाओं का काफी विस्तार किया है। मंगलवार को जारी खबर में कहा गया है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इस क्षेत्र को एक सामरिक क्षेत्र के रूप में पुनर्परिभाषित किया है जो पूर्व में ओमान की खाड़ी में बंदरगाह शहर जास्क से लेकर पश्चिम में फारस की खाड़ी के सबसे बड़े द्वीप केशम से भी आगे के क्षेत्र तक फैला हुआ है। इसमें कहा गया है कि नई परिभाषा के तहत जलडमरू मध्य अब पूर्व से पश्चिम तक लगभग 500 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है जो पहले की चौड़ाई से 10 गुना अधिक है। खबरों के मुताबिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि क्षेत्र के हर घटनाक्रम पर ईरान पैनी नजर रख रहा है और वह अपने राष्ट्रीय हितों का कोई भी उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगा।

0: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सनाए का कहना है कि विविध मार्गों और स्रोतों के माध्यम से देश जून में कच्चे तेल की खरीद के लक्ष्य का कम से कम 70% प्राप्त कर सकता है। सरकार ने ईरान संघर्ष के प्रभावों पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को संबंधित मंत्रियों की बैठक आयोजित की। ताकाइची ने कहा कि जून के लिए आशाजनक संभावनाओं को देखते हुए हम इस महीने राष्ट्रीय भंडार से कच्चे तेल की तीसरी खेप जारी नहीं करेंगे। हम देश की समग्र जरूरतों को पूरा करने के लिए तेल की खरीद में विविधता लाना जारी रखेंगे, साथ ही राष्ट्रीय भंडार में कमी को भी कम से कम करेंगे। वहीं जापान के प्रमुख तेल थोक विक्रेता इदेमित्सु कोसान भी कच्चे तेल की आपूर्ति प्राप्त करने की अपनी क्षमता के बारे में आशावादी है। इदेमित्सु कोसान के अध्यक्ष साकाई नोरियाकी ने कहा, हालात पिछले साल जैसे बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमें आपूर्ति हासिल करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है। हमें विश्वास है कि हम मौजूदा परिस्थितियों में भी खरीद जारी रखने में सक्षम होंगे। उन्होंने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बाईपास करने वाले वैकल्पिक मार्ग मौजूद हैं। जापान में घरेलू खर्च मार्च में लगातार चौथे महीने गिरा। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि उपभोक्ता मनोबल बिगड़ रहा है। आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने कहा कि मुद्रास्फीति को समायोजित करने के बाद दो या दो से अधिक सदस्यों वाले परिवारों द्वारा किए गए खर्च में पिछले वर्ष की तुलना में 2.9% की गिरावट आई है। औसत खर्च 3,34,000 येन से अधिक यानी लगभग $2,100 रहा। खाने पीने पर होने वाला खर्च 2.9% कम हुआ। कीमतों में वृद्धि के कारण मत्स्य उत्पादों, अंडों और अन्य वस्तुओं पर होने वाले खर्च में गिरावट देखी गई। सकारात्मक पक्ष ये है कि फर्नीचर और घरेलू सामानों पर खर्च में 5.5% की वृद्धि देखी गई। खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग और प्लास्टिक की थैलियों का खर्च बढ़ा। मंत्रालय का कहना है कि ईरान संघर्ष के बीच उपभोक्ता संभवतः पेट्रोलियम से बने उत्पादों का भंडारण कर रहे हैं। पश्चिमी जापान स्थित क्योतो शाही महल में गर्मियों के आगमन की तैयारी में सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार साज सज्जा बदली जा रही है। हर साल मई और नवंबर में कोरोमो गाय किया जाता है। माना जाता है कि इसी प्रथा से साल में दो बार कपड़े बदलने की आधुनिक परंपरा का जन्म हुआ है। शाही घराना एजेंसी के 5 अधिकारियों ने मंगलवार को सम्राट के दैनिक निवास सेइरेउदेन में शीत ऋतु के फर्नीचर और फर्श की बिछावट को गर्मियों के फर्नीचर और बिछावट में बदल दिया। विश्राम स्थल मिचोदाई के पर्दों को बदलने में अधिकारियों को लगभग 1 घंटे का समय लगा। इन पर्दों की डिजाइन गर्मियों के मौसम के अनुरूप है, जिसमें पंख फैलाए सफेद सारस के पैटर्न बने हुए हैं। एक अधिकारी ने आशा व्यक्त की कि आगंतुक गर्मियों की सजावट को देखेंगे और उस मौसम को महसूस करेंगे।
2: और इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 11वें पाठ में हम पूछना सीखेंगे कोई चीज उपलब्ध है या नहीं।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। आज वो हारूसान हाउस में ही रहने वाली चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ आसाकुसा आई है। दोनों सेंसोजी मंदिर तक जाने वाली मुख्य गली नाकामिसे दोरी में उपहार बेचने वाली दुकानें देख रही हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 11वें पाठ की बातचीत।
2: この T シャツ見て、忍者って書いて

0: る。
1: わあ、忍者。
2: いらっしゃいませ。
1: すみません、お守りはありますか？
2: ちょっとここにはありませんね。
0: ダム、お守りはお寺にあるよ。
1: お寺ですか？
0: 行きましょう。
3: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
4: पहले मिया ने ताम से कहा,
0: कोनो टी-शर्ट मीते?
3: ये टी-शर्ट देखो,
0: निंजा ते काइते अरु,
3: निंजा लिखा हुआ है।
4: ताम ने टी-शर्ट की तरफ देखकर कहा,
1: आ, निंजा!
3: अरे वाह, निंजा!
4: फिर दुकानदार की आवाज आई,
2: इराशाइमासे,
4: आइए आइए।
3: ताम ने दुकानदार से पूछा,
1: सुमिमासे, お守りはありますか?
3: माफ कीजिए, तावीज़ है?
4: दुकानदार ने जवाब दिया,
2: ちょっとここにはありませんね。
4: यहाँ तो नहीं है।
3: फिर मिया ने ताम को बताया,
0: ताम, お守りはお寺にあるよ。
3: ताम, तावीज़ मंदिर में मिलते हैं।
4: उसके बाद ताम ने पूछा,
1: お寺ですか?
3: मंदिर में?
4: फिर मिया ने कहा,
0: 行きましょう。
3: चलो।
4: दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि जापानी तावीज क्या होते हैं। जापानी भाषा में इन्हें ओमामोरी कहते हैं। ये आमतौर पर शिंतो और बौद्ध धर्म के मंदिरों में मिलते हैं। इन्हें शुभ माना जाता है और लोग ये मानते हैं कि ये मुसीबतों से बचाते हैं।
3: दोस्तों, अब एक बार फिर सुन लेते हैं आज की बातचीत।
0: कोनो टी-शर्ट मीते? निंजा ते काइते अरु।
1: ああ、忍者。
2: いらっしゃいませ。
1: すみません、お守りはありますか？
2: ちょっとここにはありませんね。
0: ダム、お守りはお寺にあるよ。
1: お寺ですか？
0: 行きましょう。
3: आज का मुख्य वाक्य है,
1: ओमामोरी वा अरिमास का,
3: यानी तावीज है। इसे याद करके आप पूछ सकते हैं कि जो चीज आप ढूंढ रहे हैं वो है या नहीं।
4: इस वाक्य में
5: ओमामोरी
4: का अर्थ है तावीज। वा वाक्य का विषय बताने वाला कारक है,
5: अरिमास
4: है क्रिया,
5: अरु
4: यानी होना का मास रूप, और उसके बाद लगा है का, जिससे वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है।
3: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि खरीदारी करते समय जो चीज आप ढूंढ रहे हो उसके नाम के बाद लगाना है कारक वा, और उसके बाद बोलना है
5: अरिमास का।
4: तो सुनिए और दोहराइए,
5: अरिमास का, ओमामोरी वा अरिमास का।
3: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक आदमी पर्यटन केंद्र में कुछ ढूंढ रहा है।
6: すみません, 地図はありますか?
7: はい, こちらです。
4: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
3: पहले पर्यटक ने पूछा,
6: すみません, 地図はありますか?
4: माफ कीजिए, नक्शा है?
3: यहाँ
5: 地図
3: का अर्थ है नक्शा।
4: कर्मचारी ने उत्तर दिया,
7: हाय, कोचिरा देस।
3: जी, ये रहा।
4: अगर वो चीज उपलब्ध ना हो तो शायद आपको
5: अरिमासेन
4: यानी नहीं है जैसा सीधा उत्तर नहीं, बल्कि थोड़ा घुमा फिरा कर जवाब मिलेगा, जैसे
5: चोटो
4: यानी जरा, या माफी मांगते हुए
5: सुमिमासेन
4: यानी माफ कीजिए।
3: तो सुनिए और दोहराइए,
5: चीज़ वा अरिमास का? すみません。地図はありますか?
3: अब मान लीजिए आप जापान की कोई यादगार चीज खरीद कर ले जाना चाहते हैं और जापानी हाथ का पंखा ढूंढ रहे हैं।
4: हाथ के पंखे को जापानी भाषा में कहते हैं
5: सेंस, सेंस।
4: तो वाक्य में पहले सुमिमासेन लगाकर पूछने की कोशिश कीजिए।
1: सुमिमासेन, सेंस वा अरिमास का? सुमिमासेन, सेंस वा अरिमास का?
3: अब मान लीजिए कि आप पूछना चाहते हैं कि निंजा टी शर्ट है या नहीं। टी शर्ट को कहते हैं
5: टी शर्ट।
3: निंजा टी शर्ट बोलने के लिए बीच में कारक नो लगाकर बनेगा
5: निंजा नो टी शर्ट। निंजा नो टी शर्ट।
3: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
6: सुमिमासेन, निंजा नो टी शर्ट वा अरिमास का? सुमिमासेन, निंजा नो टी शर्ट वा अरिमास का?
4: अब बारी है आज के सहज वाक्य की। आप भी याद कर लीजिए।
2: いらっしゃいませ।
5: いらっしゃいませ
3: का अर्थ है आइए आइए या स्वागत है। जब भी कोई ग्राहक किसी दुकान में जाता है उसका इस अभिवादन से स्वागत किया जाता है।
4: तो इसे अलग अलग आवाजों में सुन लेते हैं।
8: いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
3: और अब एक बार फिर सुनते हैं आज की बातचीत।
0: この T シャツ見て、忍者って書いてある。あ、忍者。
2: いらっしゃいませ。
1: すみません。お守りはありますか？
2: ちょっとここにはありませんね。
0: ダム、お守りはお寺にあるよ。
1: お寺ですか？
0: 行きましょう。
5: トラベルガイド。
4: अब समय है अंश घूमे मिया के साथ का। आज हम बताएंगे टोक्यो के लोकप्रिय पर्यटन स्थल आसाकुसा के बारे में, जहां ताम मिया के साथ गई थी।
3: आसाकुसा टोक्यो के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। वहां कामिनारी मोन है, जो सेंसोजी मंदिर का प्रवेश द्वार है। बड़ी सी लाल कंदील उस द्वार की पहचान है। वहीं से मुख्य भवन तक की 250 मीटर लंबी नाकामिसे गली शुरू हो जाती है, जिसके दोनों ओर बहुत सारी दुकानें हैं।
4: इन दुकानों में उपहार, मिठाइयां और दूसरी तरह तरह की चीजें मिलती हैं, जैसे हाथ से बने चावल के गर्मा गर्म पापड़ या आजुकी दानों के मीठे पेस्ट से भरी निंग्यो याकी। वहाँ टी शर्ट, हाथ के पंखे और चॉपस्टिक्स भी मिलते हैं।
3: नाकामिसे गली के अंत में सेंसोजी मंदिर का मुख्य भवन है। टोक्यो स्काई ट्री भी पास ही है, वहाँ पैदल जा सकते हैं।
4: बहुत सारे पर्यटक इन दोनों जगहों पर एक ही दिन में जाते हैं। आपको अगर मौका मिले तो इस क्षेत्र में टहलने का आनंद जरूर लीजिएगा।
3: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
4: अगले पाठ में ताम मंदिर से तावीज खरीदेंगी। तब तक के लिए
3: सायोनारा।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 13 मई बुधवार रात 11:30 बजे शांग्विला जैन और वाइल अखवानों से सुने समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के साथ वार्ता के लिए चीन रवाना हुए। उम्मीद है कि वे व्यापार और आर्थिक मुद्दों के साथ साथ ईरान संघर्ष और ताइवान पर भी चर्चा करेंगे। दोनों नेता बृहस्पतिवार सुबह मिलेंगे। अक्टूबर में दक्षिण कोरिया में एपेक सम्मेलन से इतर मिलने के बाद यह उनकी पहली प्रत्यक्ष मुलाकात होगी। इसके बाद वे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल टेम्पल ऑफ हेवन का दौरा करेंगे और शाम को राजकीय भोज में शामिल होंगे। शुक्रवार को चीन से रवाना होने से पहले ट्रंप दोपहर के भोजन के दौरान भी वार्ता करेंगे। वार्ता में ताइवान प्रमुख मुद्दों में से एक हो सकता है। माना जा रहा है कि चीन सरकार ट्रंप से ऐसे बयान सुनना चाहती है जिससे उसे ताइवान पर लगाम कसने में मदद मिल सके। वहीं अमेरिका ने कहा है कि उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन चीन के खिलाफ अमेरिका की प्रतिरोधक क्षमताओं को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, खासकर इसलिए क्योंकि ईरान संघर्ष में अमेरिका अपने हथियारों का भंडार तेजी से इस्तेमाल कर रहा है। वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS ने इस बात का अध्ययन किया कि ताइवान पर चीन के संभावित हमले का क्या परिणाम हो सकता है। CSIS के रक्षा एवं सुरक्षा विभाग के वरिष्ठ सलाहकार मार्क कैसियन ने कहा कि उनके विश्लेषण से पता चलता है कि अमेरिका अब भी चीन का मुकाबला करने में सक्षम है, लेकिन नुकसान बहुत बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को कई वर्षों तक जारी रहने वाली नाजुक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा से पहले ईरानी अधिकारियों ने चीन के साथ मजबूत संबंधों को रेखांकित किया है। उनका कहना है कि अमरीकी दबाव के बावजूद चीन का ईरान के प्रति रुख नहीं बदलेगा। चीन में ईरान के राजदूत अब्दुल रेजा रहमानी फाजली ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दोनों देशों के मजबूत संबंध हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे प्राचीन सभ्यता और मजबूत सांस्कृतिक रिश्ते साझा करते हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई ने संघर्ष विराम वार्ता में अमेरिकी मांगों की आलोचना करते हुए उन्हें अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि वार्ता में बराबरी का लेन देन होना जरूरी है। बागाई ने कहा कि अगर आपको लगता है कि वार्ता का मतलब 100% एक तरफा संतुष्टि है तो यह वार्ता नहीं बल्कि दूसरे पर अपनी इच्छा थोपना है और ऐसा किसी भी हालत में नहीं होगा, कम से कम ईरान के मामले में तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरानी सेना अमेरिका की संभावित जमीनी कार्रवाई सहित हर स्थिति के लिए तैयार है। ट्रंप ने मंगलवार को वॉशिंगटन में पत्रकारों से कहा था कि वे ईरान के साथ केवल एक अच्छा समझौता ही करेंगे और संघर्ष विराम की समीक्षा की जा रही है। ईरान के एक सरकारी मीडिया केंद्र का कहना है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य के परिचालन क्षेत्र को पुनर्परिभाषित कर इसकी सीमाओं का काफी विस्तार किया है। मंगलवार को जारी खबर में कहा गया है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इस क्षेत्र को एक सामरिक क्षेत्र के रूप में पुनर्परिभाषित किया है जो पूर्व में ओमान की खाड़ी में बंदरगाह शहर जास्क से लेकर पश्चिम में फारस की खाड़ी के सबसे बड़े द्वीप केशम से भी आगे के क्षेत्र तक फैला हुआ है। इसमें कहा गया है कि नई परिभाषा के तहत जलडमरू मध्य अब पूर्व से पश्चिम तक लगभग 500 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है जो पहले की चौड़ाई से 10 गुना अधिक है। खबरों के मुताबिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि क्षेत्र के हर घटनाक्रम पर ईरान पैनी नजर रख रहा है और वह अपने राष्ट्रीय हितों का कोई भी उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगा।

0: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सनाए का कहना है कि विविध मार्गों और स्रोतों के माध्यम से देश जून में कच्चे तेल की खरीद के लक्ष्य का कम से कम 70% प्राप्त कर सकता है। सरकार ने ईरान संघर्ष के प्रभावों पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को संबंधित मंत्रियों की बैठक आयोजित की। ताकाइची ने कहा कि जून के लिए आशाजनक संभावनाओं को देखते हुए हम इस महीने राष्ट्रीय भंडार से कच्चे तेल की तीसरी खेप जारी नहीं करेंगे। हम देश की समग्र जरूरतों को पूरा करने के लिए तेल की खरीद में विविधता लाना जारी रखेंगे, साथ ही राष्ट्रीय भंडार में कमी को भी कम से कम करेंगे। वहीं जापान के

0: प्रमुख तेल थोक विक्रेता इदेमित्सु कोसान भी कच्चे तेल की आपूर्ति प्राप्त करने की अपनी क्षमता के बारे में आशावादी है। इदेमित्सु कोसान के अध्यक्ष साकाई नोरियाकी ने कहा, हालात पिछले साल जैसे बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमें आपूर्ति हासिल करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है। हमें विश्वास है कि हम मौजूदा परिस्थितियों में भी खरीद जारी रखने में सक्षम होंगे। उन्होंने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बाईपास करने वाले वैकल्पिक मार्ग मौजूद हैं। जापान में घरेलू खर्च मार्च में लगातार चौथे महीने गिरा। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि उपभोक्ता मनोबल बिगड़ रहा है। आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने कहा कि मुद्रास्फीति को समायोजित करने के बाद दो या दो से अधिक सदस्यों वाले परिवारों द्वारा किए गए खर्च में पिछले वर्ष की तुलना में 2.9% की गिरावट आई है। औसत खर्च 3,34,000 येन से अधिक यानी लगभग $2,100 रहा। खाने पीने पर होने वाला खर्च 2.9% कम हुआ। कीमतों में वृद्धि के कारण मत्स्य उत्पादों, अंडों और अन्य वस्तुओं पर होने वाले खर्च में गिरावट देखी गई। सकारात्मक पक्ष ये है कि फर्नीचर और घरेलू सामानों पर खर्च में 5.5% की वृद्धि देखी गई। खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग और प्लास्टिक की थैलियों का खर्च बढ़ा। मंत्रालय का कहना है कि ईरान संघर्ष के बीच उपभोक्ता संभवतः पेट्रोलियम से बने उत्पादों का भंडारण कर रहे हैं। पश्चिमी जापान स्थित क्योतो शाही महल में गर्मियों के आगमन की तैयारी में सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार साज सज्जा बदली जा रही है। हर साल मई और नवंबर में कोरोमो गाय किया जाता है। माना जाता है कि इसी प्रथा से साल में दो बार कपड़े बदलने की आधुनिक परंपरा का जन्म हुआ है। शाही घराना एजेंसी के 5 अधिकारियों ने मंगलवार को सम्राट के दैनिक निवास सेइरेउदेन में शीत ऋतु के फर्नीचर और फर्श की बिछावट को गर्मियों के फर्नीचर और बिछावट में बदल दिया। विश्राम स्थल मिचोदाई के पर्दों को बदलने में अधिकारियों को लगभग 1 घंटे का समय लगा। इन पर्दों की डिजाइन गर्मियों के मौसम के अनुरूप है, जिसमें पंख फैलाए सफेद सारस के पैटर्न बने हुए हैं। एक अधिकारी ने आशा व्यक्त की कि आगंतुक गर्मियों की सजावट को देखेंगे और उस मौसम को महसूस करेंगे।
1: और इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 11वें पाठ में हम पूछना सीखेंगे कोई चीज उपलब्ध है या नहीं।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। आज वो हारूसान हाउस में ही रहने वाली चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ आसाकुसा आई है। दोनों सेंसोजी मंदिर तक जाने वाली मुख्य गली नाकामिसे दोरी में उपहार बेचने वाली दुकानें देख रही हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 11वें पाठ की बातचीत।
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
5: お寺ですか？
3: 行きましょう。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले मिया ने ताम से कहा,
3: कोनो टी शर्ट मीते,
1: ये टी शर्ट देखो,
3: निंजा दिखाई दे रहा,

0: निंजा लिखा हुआ है।
1: ताम ने टी शर्ट की तरफ देखकर कहा,
2: आ, निंजा।
0: अरे वाह निंजा।
1: फिर दुकानदार की आवाज आई,
3: इराशाइमासे।
1: आइए आइए।
0: ताम ने दुकानदार से पूछा,
2: सुनिमासे ओमामोरी वा अरिमास का?
0: माफ कीजिए, तावीज है।
1: दुकानदार ने जवाब दिया,
3: चोट्टो कोको नी वा अरिमासेन ने।
1: यहाँ तो नहीं है।
0: फिर मिया ने ताम को बताया,
4: ताम ओमामोरी वा ओतेरा नी आरियो।
0: ताम, तावीज मंदिर में मिलते हैं।
1: उसके बाद ताम ने पूछा,
2: ओतेरा देस का?
0: मंदिर में।
1: फिर मिया ने कहा,
4: इकिमास्यो।
0: चलो
1: दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि जापानी तावीज क्या होते हैं। जापानी भाषा में इन्हें ओमामोरी कहते हैं। ये आमतौर पर शिंतो और बौद्ध धर्म के मंदिरों में मिलते हैं। इन्हें शुभ माना जाता है और लोग ये मानते हैं कि ये मुसीबतों से बचाते हैं।
0: दोस्तों, अब एक बार फिर सुन लेते हैं आज की बातचीत।
2: कोनो टी शर्ट मीते निंजा ते काइते अरु। निंजा।
3: इराशाइमासे।
2: सुनिमासेन। ओमामोरी वा अरिमास का?
3: चोट्टो कोको नी वा अरिमासेन ने।
4: ताम, ओमामोरी वा ओतेरा नी अरु यो।
2: ओतेरा देसु का? इकिमाशो।
0: आज का मुख्य वाक्य है,
2: ओमामोरी वा अरिमास का?
0: यानी तावीज है। इसे याद करके आप पूछ सकते हैं कि जो चीज आप ढूंढ रहे हैं वो है या नहीं।
1: इस वाक्य में
5: ओमामोरी
1: का अर्थ है तावीज। वा वाक्य का विषय बताने वाला कारक है।
5: अरिमास
1: है क्रिया
5: अरु
1: यानी होना का मास रूप, और उसके बाद लगा है का, जिससे वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि खरीदारी करते समय जो चीज आप ढूंढ रहे हो उसके नाम के बाद लगाना है कारक वा, और उसके बाद बोलना है
5: अरिमास का।
1: तो सुनिए और दोहराइए,
5: अरिमास का, ओमामोरी वा अरिमास का।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक आदमी पर्यटन केंद्र में कुछ ढूंढ रहा है।
6: すみません, 地図はありますか?
7: はい, こちらです।
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
0: पहले पर्यटक ने पूछा,
6: すみません, 地図はありますか?
1: माफ कीजिए, नक्शा है?
0: यहाँ
5: 地図
0: का अर्थ है नक्शा।
1: कर्मचारी ने उत्तर दिया,
7: हाई कोचिरा देस।
0: जी ये रहा।
1: अगर वो चीज उपलब्ध ना हो तो शायद आपको
5: अरिमासेन
1: यानी नहीं है जैसा सीधा उत्तर नहीं, बल्कि थोड़ा घुमा फिरा कर जवाब मिलेगा, जैसे
5: चोट्टो
1: यानी जरा, या माफी मांगते हुए
5: सुमिमासेन
1: यानी माफ कीजिए।
0: तो सुनिए और दोहराइए,
5: चीज़ वा अरिमास का? すみません, 地図はありますか?
0: अब मान लीजिए आप जापान की कोई यादगार चीज खरीद कर ले जाना चाहते हैं और जापानी हाथ का पंखा ढूंढ रहे हैं।
1: हाथ के पंखे को जापानी भाषा में कहते हैं
5: सेंस, सेंस।
1: तो वाक्य में पहले सुमिमासेन लगाकर पूछने की कोशिश कीजिए।
7: सुमिमासेन, सेंस वा अरिमास का? सुमिमासेन, सेंस वा अरिमास का?
0: अब मान लीजिए कि आप पूछना चाहते हैं कि निंजा टी शर्ट है या नहीं। टी शर्ट को कहते हैं
5: टी शर्ट्स।
0: निंजा टी शर्ट बोलने के लिए बीच में कारक नो लगाकर बनेगा
5: निंजा नो टी शर्ट्स, 忍者の T シャツ。
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
6: すみません。忍者の T シャツはありますか？すみません。忍者の T シャツはありますか？
1: अब बारी है आज के सहज वाक्य की। आप भी याद कर लीजिए।
3: いらっしゃいませ।
5: いらっしゃいませ
0: का अर्थ है आइए आइए या स्वागत है। जब भी कोई ग्राहक किसी दुकान में जाता है, उसका इस अभिवादन से स्वागत किया जाता है।
1: तो इसे अलग अलग आवाजों में सुन लेते हैं।
8: いらっしゃいませ।
9: いらっしゃいませ।
8: いらっしゃいませ।
0: और अब एक बार फिर सुनते हैं आज की बातचीत।
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。ああ、忍者。
3: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
3: ちょっとここにはありませんね。
4: ダム、お守りはお寺にあるよ。
2: お寺ですか？
4: 行きましょう。
5: トラベルガイド。
1: अब समय है अंश घूमे मिया के साथ का। आज हम बताएंगे टोक्यो के लोकप्रिय पर्यटन स्थल आसाकुसा के बारे में, जहां ताम मिया के साथ गई थी।
0: आसाकुसा टोक्यो के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। वहां कामिनारी मोन है, जो सेंसोजी मंदिर का प्रवेश द्वार है। बड़ी सी लाल कंदील उस द्वार की पहचान है। वहीं से मुख्य भवन तक की 250 मीटर लंबी नाकामिसे गली शुरू हो जाती है, जिसके दोनों ओर बहुत सारी दुकानें हैं।
1: इन दुकानों में उपहार, मिठाइयां और दूसरी तरह तरह की चीजें मिलती हैं, जैसे हाथ से बने चावल के गर्मा गर्म पापड़ या आजुकी दानों के मीठे पेस्ट से भरी निंग्यो याकी। वहाँ टी शर्ट, हाथ के पंखे और चॉपस्टिक्स भी मिलते हैं।
0: नाकामिसे गली के अंत में सेंसोजी मंदिर का मुख्य भवन है। टोक्यो स्काई ट्री भी पास ही है, वहाँ आप पैदल जा सकते हैं।
1: बहुत सारे पर्यटक इन दोनों जगहों पर एक ही दिन में जाते हैं। आपको अगर मौका मिले तो इस क्षेत्र में टहलने का आनंद जरूर लीजिएगा।
0: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
1: अगले पाठ में ताम मंदिर से तावीज खरीदेंगी। तब तक के लिए
0: सायोनारा।

0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें। जापान की वज़ीर-ए-आज़म ताकाइची सानाई का कहना है कि मुल्क मुमकिन तौर पर जून के खाम तेल की खरीदारी के हदफ का कम अज कम 70% मुख्तलिफ रास्तों और ज़राए से हासिल कर लेगा। हुकूमत ने मुतलका वुज़रा का इजलास मंगल को मुनाकिद किया, जिसमें ईरान जंग के असरात पर गौर किया गया। ताकाइची ने कहा, जून के लिए उम्मीद अफजा मंजरनामे को देखते हुए हम इस माह कौमी ज़खायर से खाम तेल की तीसरी खेप जारी नहीं करेंगे। हम खरीदारी को मतलब वो बनाते रहेंगे ताकि मुल्क की मजमूई ज़रूरियात के मुताबिक तेल हासिल किया जा सके और कौमी ज़खायर में कमी को कम से कम रखा जाए। दूसरी जानब तेल के मारूफ जापानी होलसेलर इदेमित्सु कोसान ने भी खाम तेल के हसूल की अपनी सलाहियत के हवाले से उम्मीद का इजहार किया है। इदेमित्सु कोसान के सदर साकाई नोरी आकी ने कहा कि सूरत हाल हूबहू पिछले साल जैसी नहीं है, लेकिन हम ऐसी पोजीशन में भी नहीं हैं जहां हमें सप्लाई हासिल करने में इंतहाई दुश्वारी का सामना हो। हमें यकीन है कि हम मौजूदा हालात में भी खरीदारी जारी रखने के काबिल होंगे। उन्होंने वजाहत की कि मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब से मुतबादल रास्ते मौजूद हैं जो आबनाए हुर्मस को बाईपास करते हैं। मार्च में जापानी घरेलू खर्च में मुसलसल चौथे महीने कमी आई है। हुकूमती अहदेदारों ने कहा कि सार्फिन का तासुर खराब तर हो रहा है। दाखला उमूर की वजारत ने कहा कि मार्च के महीने में दो या दो से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल घरानों के खर्चे में अफरात जर की जमा तफरीक के बाद एक साल पहले के मुकाबले में 2.9% की कमी आई। औसत खर्च 3,34,000 येन या तकरीबन $2,100 रहा। खुराक के खर्चे में 2.9% की कमी आई। कीमतों में इजाफे के बायस मछली से मुतलिका मसनूआत, अंडों और दीगर अशिया पर खर्च कम हो गया। रोशन पहलू के तौर पर फर्नीचर और घरेलू सामान पर खर्चे में 5.5% इजाफा हुआ, क्योंकि फूड रैप और प्लास्टिक फिल्म बैग्स पर अदायगियों में इजाफा हुआ। वजारत का कहना है कि ईरान के तनाजे के दौरान सार्फिन मुमकिन तौर पर पेट्रोलियम से तैयार होने वाली मसनूआत का जखीरा कर रहे थे। मगरबी जापान में क्योटो शाही महल मौसम की मुनासबत से फर्निशिंग तब्दील करने की सदियों पुरानी रवायत के साथ मौसम गर्मा की तैयारी कर रहा है। क्रोमोगाय का इनेकाद हर साल मई और नवंबर में किया जाता है। ख्याल किया जाता है कि यह रवायत साल में दो बार अलमारियों की तरतीब बदलने के जदीद रवाज की बुनियाद है। मंगल को शाही अमूर खाना एजेंसी के 5 एहलकारों ने शहनशाह की रोजमर्रा की रहायशगाह सैरियोदेन में मौसम सरमा के फर्नीचर और फर्श पर बिछे सामान को मौसम गर्मा की अशिया के साथ तब्दील किया। हुकाम ने तकरीबन 1 घंटा मिचोदाई कैनोपी के पर्दे तब्दील करने में गुजारा, जो आराम करने की जगह है। मौसम गर्मा के वर्जन में पर्दों में सफेद कुंजें पर फैलाए दिखाई देती हैं। एक अहलकार ने कहा कि वह चाहता है कि जहां आने वाले मौसम गर्मा की सजावट को देखें और मौसम को महसूस करें।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग के साथ सरबराही इजलास के लिए मंगल को चीन रवाना हो गए। तवक्को की जाती है कि वह तजारती और इक्तसादी मसाइल के साथ साथ ताइवान और ईरान के तनाज़े पर बातचीत करेंगे। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे चीन से कबल ईरानी हुकाम ने बीजिंग के साथ अपने मजबूत ताल्लुकात को उजागर किया है। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुई। मजीद खबरों, तबसरों और तज़ज़ियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

0: 行きましょう。
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है, क्या आपके पास तावीज़ है?
2: ओमामोरी वा अरिमासु का?
1: अगर आप इसे याद कर लें तो अपनी मतलूबा चीज दस्तयाब होने के बारे में पूछ सकते हैं।
3: अब हम आज के कलीदी जुमले की तशरीह करते हैं। ओमामोरी के मानी है तावीज़, इसके बाद का वा मौजू को जाहिर करता है। आरिमस दरअसल फेल आरू यानी होना की मस शक्ल है, और आखिर में का लगाकर जुमले को सवालिया बनाया गया है। अब आज का नुक्ता, किसी दुकानदार से अपनी मतलूबा चीज़ होने का पूछने के लिए उस चीज़ के नाम के बाद वा और फिर आरिमस का लगाया जाता है।
1: अब वक्त हुआ है मश का, तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
4: अरिमस का, ओमामोरी वा अरिमस का, ओमामोरी वा अरिमस का।
1: जी सामीन, यकीनन आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
3: और अब एक मुख्तसर मकालमा सुनिए। एक सयाह मालूमाती मरकज में किसी चीज़ की दस्तियाबी के बारे में दरियाफ्त कर रहा है।
5: सुमिमासेन, चिज़ु वा अरिमासु का?
2: हाई, कोचिरा देसु।
3: अब इस मकालमे की तशरीह, सयाह पूछता है,
5: सुमिमासेन, चिज़ु वा अरिमासु का?
1: माफ कीजिएगा, क्या आपके पास नक्शा है?
3: आप पहले सीख चुके हैं कि किसी से कोई सवाल करते वक्त उसे मुतवज्जे करने के लिए इब्तिदा में सुमिमासेन कहा जाता है। चीज़ के मायने है नक्शा। मालूमाती मरकज़ के अमले की फ़र्द सयाह को नक्शा देते हुए कहती है,
2: हाय, कोचिरा देस।
1: जी, ये लें।
3: अगर मरकज़ में नक्शा दस्तियाब ना हो तब भी मुमकिन तौर पर अमले का फ़र्द साफ इनकार करते हुए आरिमासेन या नहीं है कहने की बजाय माजत खाना लहजे में चुत्तो या फिर सुमिमासेन कहेगा।
1: तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
4: चिज़ु वा अरिमासु का? सुमिमासेन, चिज़ु वा अरिमासु का?
3: फर्ज कीजिए आप तहाइफ की दुकान पर हैं और पूछना चाहते हैं कि आया उनके पास रिवायती फोल्डिंग पंखा है। फोल्डिंग पंखे की जापानी है
4: सेंस, सेंस।
3: बात का आगाज माफ कीजिएगा यानी सुमिमासेन से करें, तो सामीन कोशिश कीजिए।
2: सुमिमासेन, सेंस वा अरिमासु का? सुमिमासेन, सेंस वा अरिमासु का?
3: अब ये पूछकर देखें कि क्या उनके पास निंजा टी शर्ट है। टी शर्ट का जापानी तलफ़ुज है टी शर्ट्स। निंजा टी शर्ट कहने के लिए हर्फ जार नो लगाकर यूं कहेंगे,
4: निंजा नो टी शर्ट्स, निंजा नो टी शर्ट्स।
5: सुमिमासेन, निंजा नो टी शर्ट्स वा अरिमासु का? सुमिमासेन, निंजा नो टी शर्ट्स वा अरिमासु का?
1: अब आप किसी भी दुकान में अपनी मतलूबा चीज मौजूद होने के बारे में पूछ सकते हैं।
3: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का जुमला दुकानदार का जुमला है, इसे इसी तरह याद कर लें।
6: इराशाइमासे।
3: जब किसी दुकान में कोई ग्राहक दाखिल होता है तो अमला इराशाइमासे कहता है।
1: अब ये जुमला मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुनिए।
7: इराशाइमासे,
8: इराशाइमासे,
7: इराशाइमासे।
3: अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनिए। ताम और दुकानदार की गुफ्तगु वाले हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें।
2: कोनो टी शर्ट्स मीते, निंजा ते काइते अरु। आ, निंजा।
6: इराशाइमासे।
2: सुमिमासेन, ओमामोरी वा अरिमासु का?
6: चोट्टो कोको नी वा अरिमासेन ने।
2: ताम, ओमामोरी वा ओतेरा नी अरु यो। お寺ですか？行きましょう。
4: ミーヤーのトラベルガイド。
1: अब मियां का सफरी हिदायतनामा। इसमें आज टोक्यो के मशहूर सियाहती मकाम असाकुसा का तारुफ पेश है। ये आज के मकालमे का मकाम भी है।
3: टोक्यो के मशरकी हिस्से में

0: वाकई असाक्सा में हमेशा सयाहों की भीड़ होती है। कामिनारी मोन दरवाजा सेंसोजी मंदिर जाने वाले रास्ते का आगाज है। यहाँ पर लटकी हुई बड़ी सुर्ख कागजी लालटेन दूर से ही नजर आ जाती है। इसके बाद मंदिर के मरकजी हॉल की जानिब जाने वाली नाकामी से दोरी नामी गली है। ये 250 मीटर तवील शॉपिंग स्ट्रीट है।
1: इस गली में दोनों जानिब कई दुकानें हैं जिनमें तहाइफ से मिठाइयों तक हर किस्म की अशिया फरोख्त होती हैं।
0: मिसाल के तौर पर हाथ से सेंके हुए गर्मा गर्म राइस क्रैकर, निंगियो याकी नामी छोटे छोटे स्पॉन्ज केक जिनमें सुर्ख फलियों का पेस्ट होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ अकसाम की टी शर्ट्स, रिवायती फोल्डिंग पंखे और चॉपस्टिक्स भी होती हैं। नाकामी से दोरी नामी गली के आखिरी सिरे पर सेंसोजी मंदिर का मरकजी हॉल है।
1: अनवर साहब, टोक्यो स्काई ट्री भी गालिबन वहाँ से करीब है ना?
0: जी हाँ, पैदल कुछ ही देर की मुसाफत पर है। अक्सर सयाह सेंसोजी मंदिर और टोक्यो स्काई ट्री की सैर एक ही दिन में कर लेते हैं। सामीन, आपको टोक्यो आने का मौका मिले तो असक्सा इलाके का चक्कर जरूर लगाइएगा।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 13 मई बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रिला जैन और वायल अखवानों से सुने समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के साथ वार्ता के लिए चीन रवाना हुए। उम्मीद है कि वे व्यापार और आर्थिक मुद्दों के साथ साथ ईरान संघर्ष और ताइवान पर भी चर्चा करेंगे। दोनों नेता बृहस्पतिवार सुबह मिलेंगे। अक्टूबर में दक्षिण कोरिया में एपेक्स सम्मेलन से इतर मिलने के बाद यह उनकी पहली प्रत्यक्ष मुलाकात होगी। इसके बाद वे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल टेम्पल ऑफ हेवन का दौरा करेंगे और शाम को राजकीय भोज में शामिल होंगे। शुक्रवार को चीन से रवाना होने से पहले ट्रंप दोपहर के भोजन के दौरान भी वार्ता करेंगे। वार्ता में ताइवान प्रमुख मुद्दों में से एक हो सकता है। माना जा रहा है कि चीन सरकार ट्रंप से ऐसे बयान सुनना चाहती है जिससे उसे ताइवान पर लगाम कसने में मदद मिल सके। वहीं अमेरिका ने कहा है कि उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन चीन के खिलाफ अमेरिका की प्रतिरोधक क्षमताओं को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, खासकर इसलिए क्योंकि ईरान संघर्ष में अमेरिका अपने हथियारों का भंडार तेजी से इस्तेमाल कर रहा है। वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS ने इस बात का अध्ययन किया कि ताइवान पर चीन के संभावित हमले का क्या परिणाम हो सकता है। CSIS के रक्षा एवं सुरक्षा विभाग के वरिष्ठ सलाहकार मार्क कैसियन ने कहा कि उनके विश्लेषण से पता चलता है कि अमेरिका अब भी चीन का मुकाबला करने में सक्षम है, लेकिन नुकसान बहुत बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को कई वर्षों तक जारी रहने वाली नाजुक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा से पहले ईरानी अधिकारियों ने चीन के साथ मजबूत संबंधों को रेखांकित किया है। उनका कहना है कि अमरीकी दबाव के बावजूद चीन का ईरान के प्रति रुख नहीं बदलेगा। चीन में ईरान के राजदूत अब्दुल रेजा रहमानी फाजली ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दोनों देशों के मजबूत संबंध हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे प्राचीन सभ्यता और मजबूत सांस्कृतिक रिश्ते साझा करते हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई ने संघर्ष विराम वार्ता में अमरीकी मांगों की आलोचना करते हुए उन्हें अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि वार्ता में बराबरी का लेन देन होना जरूरी है। बागाई ने कहा कि अगर आपको लगता है कि वार्ता का मतलब 100% एक तरफा संतुष्टि है तो यह वार्ता नहीं बल्कि दूसरे पर अपनी इच्छा थोपना है और ऐसा किसी भी हालत में नहीं होगा, कम से कम ईरान के मामले में तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरानी सेना अमेरिका की संभावित जमीनी कार्रवाई सहित हर स्थिति के लिए तैयार है। ट्रंप ने मंगलवार को वॉशिंगटन में पत्रकारों से कहा था कि वे ईरान के साथ केवल एक अच्छा समझौता ही करेंगे और संघर्ष विराम की समीक्षा की जा रही है। ईरान के एक सरकारी मीडिया केंद्र का कहना है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य के परिचालन क्षेत्र को पुनर्परिभाषित कर इसकी सीमाओं का काफी विस्तार किया है। मंगलवार को जारी खबर में कहा गया है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इस क्षेत्र को एक सामरिक क्षेत्र के रूप में पुनर्परिभाषित किया है जो पूर्व में ओमान की खाड़ी में बंदरगाह शहर जास्क से लेकर पश्चिम में फारस की खाड़ी के सबसे बड़े द्वीप केशम से भी आगे के क्षेत्र तक फैला हुआ है। इसमें कहा गया है कि नई परिभाषा के तहत जलडमरू मध्य अब पूर्व से पश्चिम तक लगभग 500 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है जो पहले की चौड़ाई से 10 गुना अधिक है। खबरों के मुताबिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि क्षेत्र के हर घटनाक्रम पर ईरान पैनी नजर रख रहा है और वह अपने राष्ट्रीय हितों का कोई भी उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगा।

0: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सनाए का कहना है कि विविध मार्गों और स्रोतों के माध्यम से देश जून में कच्चे तेल की खरीद के लक्ष्य का कम से कम 70% प्राप्त कर सकता है। सरकार ने ईरान संघर्ष के प्रभावों पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को संबंधित मंत्रियों की बैठक आयोजित की। ताकाइची ने कहा कि जून के लिए आशाजनक संभावनाओं को देखते हुए हम इस महीने राष्ट्रीय भंडार से कच्चे तेल की तीसरी खेप जारी नहीं करेंगे। हम देश की समग्र जरूरतों को पूरा करने के लिए तेल की खरीद में विविधता लाना जारी रखेंगे, साथ ही राष्ट्रीय भंडार में कमी को भी कम से कम करेंगे। वहीं जापान के प्रमुख तेल थोक विक्रेता इदेमित्सु कोसान भी कच्चे तेल की आपूर्ति प्राप्त करने की अपनी क्षमता के बारे में आशावादी है। इदेमित्सु कोसान के अध्यक्ष साकाई नोरियाकी ने कहा, हालात पिछले साल जैसे बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमें आपूर्ति हासिल करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है। हमें विश्वास है कि हम मौजूदा परिस्थितियों में भी खरीद जारी रखने में सक्षम होंगे। उन्होंने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बाईपास करने वाले वैकल्पिक मार्ग मौजूद हैं। जापान में घरेलू खर्च मार्च में लगातार चौथे महीने गिरा। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि उपभोक्ता मनोबल बिगड़ रहा है। आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने कहा कि मुद्रास्फीति को समायोजित करने के बाद दो या दो से अधिक सदस्यों वाले परिवारों द्वारा किए गए खर्च में पिछले वर्ष की तुलना में 2.9% की गिरावट आई है। औसत खर्च 3,34,000 येन से अधिक यानी लगभग $2,100 रहा। खाने पीने पर होने वाला खर्च 2.9% कम हुआ। कीमतों में वृद्धि के कारण मत्स्य उत्पादों, अंडों और अन्य वस्तुओं पर होने वाले खर्च में गिरावट देखी गई। सकारात्मक पक्ष ये है कि फर्नीचर और घरेलू सामानों पर खर्च में 5.5% की वृद्धि देखी गई। खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग और प्लास्टिक की थैलियों का खर्च बढ़ा। मंत्रालय का कहना है कि ईरान संघर्ष के बीच उपभोक्ता संभवतः पेट्रोलियम से बने उत्पादों का भंडारण कर रहे हैं। पश्चिमी जापान स्थित क्योतो शाही महल में गर्मियों के आगमन की तैयारी में सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार साज सज्जा बदली जा रही है। हर साल मई और नवंबर में कोरोमो गाय किया जाता है। माना जाता है कि इसी प्रथा से साल में दो बार कपड़े बदलने की आधुनिक परंपरा का जन्म हुआ है। शाही घराना एजेंसी के 5 अधिकारियों ने मंगलवार को सम्राट के दैनिक निवास सेइरेउदेन में शीत ऋतु के फर्नीचर और फर्श की बिछावट को गर्मियों के फर्नीचर और बिछावट में बदल दिया। विश्राम स्थल मिचोदाई के पर्दों को बदलने में अधिकारियों को लगभग 1 घंटे का समय लगा। इन पर्दों की डिजाइन गर्मियों के मौसम के अनुरूप है, जिसमें पंख फैलाए सफेद सारस के पैटर्न बने हुए हैं। एक अधिकारी ने आशा व्यक्त की कि आगंतुक गर्मियों की सजावट को देखेंगे और उस मौसम को महसूस करेंगे।
2: और इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।

0: NHK World Japan की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 11वें पाठ में हम पूछना सीखेंगे कोई चीज उपलब्ध है या नहीं।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। आज वो हारूसान हाउस में ही रहने वाली चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ आसाकुसा आई है। दोनों सेंसोजी मंदिर तक जाने वाली मुख्य गली नाकामिसे दोरी में उपहार बेचने वाली दुकानें देख रही हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 11वें पाठ की बातचीत।
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: タム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले मिया ने ताम से कहा,
2: कोनो टी शर्ट मीते,
1: ये टी शर्ट देखो,
3: निंजा ते काइतारु,
1: निंजा लिखा हुआ है।
0: ताम ने टी शर्ट की तरफ देखकर कहा,
3: आ, निंजा,
1: अरे वाह निंजा।
0: फिर दुकानदार की आवाज आई,
4: इराशाइमासे,
0: आइए आइए।
1: ताम ने दुकानदार से पूछा,
3: सुनिमासे, ओमामोरी वा अरिमासु का,
1: माफ कीजिए तावीज है।
0: दुकानदार ने जवाब दिया,
4: चोट्टो कोको नी वा अरिमासेन ने,
0: यहाँ तो नहीं है।
1: फिर मिया ने ताम को बताया,
2: ताम ओमामोरी वा ओतेरा नी आरियो,
1: ताम तावीज मंदिर में मिलते हैं।
0: उसके बाद ताम ने पूछा,
3: ओतेरा देस का,
1: मंदिर में।
0: फिर मिया ने कहा,
2: इकिमाश्यो,
1: चलो।
0: दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि जापानी तावीज क्या होते हैं। जापानी भाषा में इन्हें ओमामोरी कहते हैं। ये आमतौर पर शिंतो और बौद्ध धर्म के मंदिरों में मिलते हैं। इन्हें शुभ माना जाता है और लोग ये मानते हैं कि ये मुसीबतों से बचाते हैं।
1: दोस्तों अब एक बार फिर सुन लेते हैं आज की बातचीत।
2: कोनो टी शर्ट मीते, निंजा ते काइते अरु।
3: निंजा,
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
1: आज का मुख्य वाक्य है,
3: ओमामोरी वा अरिमास का,
1: यानी तावीज है। इसे याद करके आप पूछ सकते हैं कि जो चीज आप ढूंढ रहे हैं वो है या नहीं।
0: इस वाक्य में
5: ओमामोरी
0: का अर्थ है तावीज। वा वाक्य का विषय बताने वाला कारक है,
5: अरिमास
0: है क्रिया,
5: अरु
0: यानी होना का मास रूप, और उसके बाद लगा है का, जिससे वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि खरीदारी करते समय जो चीज आप ढूंढ रहे हो उसके नाम के बाद लगाना है कारक वा, और उसके बाद बोलना है
5: अरिमास का।
0: तो सुनिए और दोहराइए,
5: अरिमास का, ओमामोरी वा अरिमास का।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक आदमी पर्यटन केंद्र में कुछ ढूंढ रहा है।
6: すみません, 地図 वा अरिमास का?
7: हाय, こちら です।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले पर्यटक ने पूछा,
6: すみません, 地図 वा अरिमास का?
0: माफ कीजिए, नक्शा है?
1: यहाँ
5: चीज
1: का अर्थ है नक्शा।
0: कर्मचारी ने उत्तर दिया,
7: हाय, कोचिरा देस।
1: जी, ये रहा।
0: अगर वो चीज उपलब्ध ना हो तो शायद आपको
5: अरिमासेन
0: यानी नहीं है जैसा सीधा उत्तर नहीं बल्कि थोड़ा घुमा फिरा कर जवाब मिलेगा, जैसे
5: चोटो
0: यानी जरा, या माफी मांगते हुए
5: सुमिमासेन
0: यानी माफ कीजिए।
1: तो सुनिए और दोहराइए।
5: चिज़ु वा अरिमासु का? सुमिमासेन, चिज़ु वा अरिमासु का?
1: अब मान लीजिए आप जापान की कोई यादगार चीज खरीद कर ले जाना चाहते हैं और जापानी हाथ का पंखा ढूंढ रहे हैं।
0: हाथ के पंखे को जापानी भाषा में कहते हैं
5: सेंसु, सेंसु।
0: तो वाक्य में पहले सुमिमासेन लगाकर पूछने की कोशिश कीजिए।
7: सुमिमासेन, सेंसु वा अरिमासु का? सुमिमासेन, सेंसु वा अरिमासु का?
1: अब मान लीजिए कि आप पूछना चाहते हैं कि निंजा टी शर्ट है या नहीं। टी शर्ट को कहते हैं
5: टी शर्ट।
1: निंजा टी शर्ट बोलने के लिए बीच में कारक नो लगाकर बनेगा
5: निंजा नो टी शर्ट, निंजा नो टी शर्ट।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
6: すみません, निंजा नो टी शर्ट वा अरिमासु का? すみません, निंजा नो टी शर्ट वा अरिमासु का?
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, आप भी याद कर लीजिए।
8: いらっしゃいませ,
5: いらっしゃいませ
1: का अर्थ है आइए आइए या स्वागत है। जब भी कोई ग्राहक किसी दुकान में जाता है उसका इस अभिवादन से स्वागत किया जाता है।
0: तो इसे अलग अलग आवाजों में सुन लेते हैं।
9: いらっしゃいませ,
10: いらっしゃいませ,
1: いらっしゃいませ। और अब एक बार फिर सुनते हैं आज की बातचीत।
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。ああ、忍者。
8: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
0: अब समय है अंश घूमे मिया के साथ का। आज हम बताएंगे टोक्यो के लोकप्रिय पर्यटन स्थल आसाकुसा के बारे में, जहां ताम मिया के साथ गई थी।
1: आसाकुसा टोक्यो के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। वहां कामिनारी मोन है जो सेंसोजी मंदिर का प्रवेश द्वार है। बड़ी सी लाल कंदील उस द्वार की पहचान है। वहीं से मुख्य भवन तक की 250 मीटर लंबी नाकामिसे गली शुरू हो जाती है, जिसके दोनों ओर बहुत सारी दुकानें हैं।
0: इन दुकानों में उपहार, मिठाइयां और दूसरी तरह तरह की चीजें मिलती हैं, जैसे हाथ से बने चावल के गर्मा गर्म पापड़ या आजुकी दानों के मीठे पेस्ट से भरी निंग्यो याकी। वहाँ टी शर्ट, हाथ के पंखे और चॉपस्टिक्स भी मिलते हैं।
1: नाकामिसे गली के अंत में सेंसोजी मंदिर का मुख्य भवन है। टोक्यो स्काई ट्री भी पास ही है, वहाँ पैदल जा सकते हैं।
0: बहुत सारे पर्यटक इन दोनों जगहों पर एक ही दिन में जाते हैं। आपको अगर मौका मिले तो इस क्षेत्र में टहलने का आनंद जरूर लीजिएगा।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम मंदिर से तावीज खरीदेंगी। तब तक के लिए
1: सायोनारा।

ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें। जापान की वज़ीर-ए-आज़म ताकाइची सानाई का कहना है कि मुल्क मुमकिन तौर पर जून के खाम तेल की खरीदारी के हदफ का कम अज़ कम 70% मुख्तलिफ रास्तों और ज़राए से हासिल कर लेगा। हुकूमत ने मुतल्लिका वुज़रा का इजलास मंगल को मुनाकिद किया, जिसमें ईरान जंग के असरात पर गौर किया गया। ताकाइची ने कहा, जून के लिए उम्मीद अफजा मंजरनामे को देखते हुए हम इस माह कौमी ज़खायर से खाम तेल की तीसरी खेप जारी नहीं करेंगे। हम खरीदारी को मतनव्वो बनाते रहेंगे ताकि मुल्क की मजमूई ज़रूरियात के मुताबिक तेल हासिल किया जा सके और कौमी ज़खायर में कमी को कम से कम रखा जाए। दूसरी जानब तेल के मारूफ जापानी होलसेलर हिदेमित्सु कोसान ने भी खाम तेल के हसूल की अपनी सलाहियत के हवाले से उम्मीद का इजहार किया है। हिदेमित्सु कोसान के सदर साकाई नोरी आकी ने कहा कि सूरत हाल हूबहू पिछले साल जैसी नहीं है, लेकिन हम ऐसी पोजीशन में भी नहीं हैं जहां हमें सप्लाई हासिल करने में इंतहाई दुश्वारी का सामना हो। हमें यकीन है कि हम मौजूदा हालात में भी खरीदारी जारी रखने के काबिल होंगे। उन्होंने वजाहत की कि मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब से मुतबादल रास्ते मौजूद हैं जो आबनाए हुर्मस को बाईपास करते हैं। मार्च में जापानी घरेलू खर्च में मुसलसल चौथे महीने कमी आई है। हुकूमती अहदेदारों ने कहा कि सार्फिन का तासुर खराब तर हो रहा है। दाखिला उमूर की वजारत ने कहा कि मार्च के महीने में दो या दो से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल घरानों के खर्चे में अफराते जर की जमा तफरीक के बाद एक साल पहले के मुकाबले में 2.9% की कमी आई। औसत खर्च 3,34,000 येन या तकरीबन $2,100 रहा। खुराक के खर्चे में 2.9% की कमी आई। कीमतों में इजाफे के बायस मछली से मुतल्लिका मसनूआत, अंडों और दीगर अशिया पर खर्च कम हो गया। रोशन पहलू के तौर पर फर्नीचर और घरेलू सामान पर खर्चे में 5.5% इजाफा हुआ, क्योंकि फूड रैप और प्लास्टिक फिल्म बैग्स पर अदायगियों में इजाफा हुआ। वजारत का कहना है कि ईरान के तनाजे के दौरान सार्फिन मुमकिन तौर पर पेट्रोलियम से तैयार होने वाली मसनूआत का जखीरा कर रहे थे। मगरबी जापान में क्योतो शाही महल मौसम की मुनासबत से फर्निशिंग तब्दील करने की सदियों पुरानी रवायत के साथ मौसम गर्मा की तैयारी कर रहा है। क्रोमोगाय का इनेकाद हर साल मई और नवंबर में किया जाता है। ख्याल किया जाता है कि यह रवायत साल में दो बार अलमारियों की तरतीब बदलने के जदीद रवाज की बुनियाद है। मंगल को शाही अमूर खाना एजेंसी के 5 एहलकारों ने शहनशाह की रोजमर्रा की रहायशगाह सैरियोदेन में मौसम सरमा के फर्नीचर और फर्श पर बिछे सामान को मौसम गर्मा की अशिया के साथ तब्दील किया। हुकाम ने तकरीबन 1 घंटा मिचोदाई कैनोपी के पर्दे तब्दील करने में गुजारा, जो आराम करने की जगह है।

0: में गर्मा के वर्जन में पर्दों में सफेद कुंजें पर फैलाए दिखाई देती हैं। एक एहलकार ने कहा कि वह चाहता है कि जहां आने वाले मौसम में गर्मा की सजावट को देखें और मौसम को महसूस करें।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग के साथ सरबराही इजलास के लिए मंगल को चीन रवाना हो गए। तवक्को की जाती है कि वो तजारती और इक्तसादी मसाइल के साथ साथ ताइवान और ईरान के तनाज़े पर बातचीत करेंगे। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे चीन से कबल ईरानी हुकाम ने बीजिंग के साथ अपने मजबूत ताल्लुकात को उजागर किया है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुईं। मज़ीद खबरों, तबसरों और तज़ज़ियों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।